0: अपनी भैन माता छड के इसत्री लोग पालिया कर ज्यादा भैं मावा की परवाह घट ही कर इसत्री सूट लिया के दया कर
1: सुत नारी ससुरा भजै सासू भजै जमात।
0: इस प्रकार पुत्र नारी और जेडे ससुर आदिक ने इना दी ते सासू भजा जमात। कलयुग दे विच कहिंदे सस जेड़ी है वो जवाई नूं ज्यादा सत्कार दिया करेगी।
1: दास भजै भूपत जवत पिपल ने उपजै शांत।
0: ब्राह्मण तां ठंडे ही पै जाणगे कहिंदे ते जेड़ियां दासियां दास होणगे राजां दे नौकर आदिक होणगे ए माड़े।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़िया गल्लां करनिया, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताए पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्र।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने वो अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे, इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जट्टा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेख।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटा लंबिया लंबिया बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी उह विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे ते अंदरों कम जिहड़े ने उह बौले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां, वैसे ज्ञान जिहड़े ने उह संसार नूं ज्ञान दियां, ताहीं एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

0: تم تاپ کے آئے، کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد، جی بکار آ جائے تا مر جا، یہ الٹ گل لکھی ہے، پر کبھو نہ اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا، ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ، مرے تن تاپ کے آئے، جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے۔ اسی پرکار ساری کوتا کا ارتھ کبھو نہ اکھر دے اتے کھڑا ہے، اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے تنا سنگھ جی نے جب سنائے تو چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا، کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاو انک جگت جت کوت سناو،
0: ہوں کبھی جڑے نے چرچا کرتے نے بیٹھ کے آپس بچار ہندیاں نے، अनेक प्रकार दियां कवितावां सुनाउंदे ने, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने, गुरां दी प्रसन्नता हुंदी है, क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है, हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है, इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है, सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है।
1: बख्शिश लेत महा मन भाए जैर दे गुण ने अधकाए,
0: बहुत जिन्हां दे विच गुण ने उन्हां ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे ने, ओह बख्शिश लैंदे ने मन भाउंदे गुरां तों। इस तरीके नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ लिखवाया कवियां तों, कवियां दे हंकार भी तोड़े ने, सीधे रस्ते भी लाया और संगत लई बड़े ये जिन्हां प्रसंग आपां श्रवण करदे हां। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बारे आम लोग तां ही कहंदे ने कि दसवें पातशाह बड़े गर्म सीगे, पहले पातशाह बड़े ठंडे सी। वो कौन कहना जेड़ा कदे कथा सुननी नहीं आया है, जिन्हों कलगियां वाले पातशाह के गुणा का ही नहीं पता है, जिन्हें यह नहीं पता कि सच्चे पातशाह किन्ने महान ने, किन्ने विद्वान ने, किन्ने योधे ने। महाराज ने पंक्ति लिखी गुरबाणी च, कहने सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया, सारे गुण किसी विच नहीं है, पर वाहेगुरु भंडार है, भंडार गुणा का। दसवें पातशाह उही ने, आप ही परमेश्वर ने, गुणा दे भंडार ने। सतगुरु महाराज ने आपां नूं भी थोड़ा थोड़ा इस पासे तोरिया कि भाई दसवें पातशाह जे कोई कविता सुना दिंदा तो बड़े खुश हुंदे। इस करके हुण भी गुरु घर विच साडे बहुत सारे कवि जन आउंदे ने, कविता सुनाउंदे ने, ढाडी आउंदे ने, कविशर आउंदे ने। इह शुरू तों लैके गुरु घर विच छेवें पातशाह तों लैके मान मर्यादा चली आई है, तां दे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ही नहीं कहते कि कविता ना पढ़ो, पर कहते गंदी कविता ना पढ़ो। गुरु घर दी कविता, भाई वीर सिंह ने बड़िया कवितावां लिखिया, बड़िया सोहनिया सोहनिया लिखिया, और एक खुदाए पई एक खुदाए, तीन खुदाए पई तीन खुदाए, कौन बोलता? दसवें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह बहादुर शाह गया जदों श्री हजूर साहब लंगर साहब के पिछले पासे जिहड़ा स्थान है महाराज जी का, सो गुरद्वारा नगीना घाट के हीरा घाट है, थोड़ा जिहा ना फर्क पै जांदा मैनू, तां उत्थे बहादुर शाह ने जब मत्था टेकिया सी तां महाराज सच्चे पातशाह नूं जाके कहिंदा एक खुदाए पे एक खुदाए, दसवें पातशाह कहिंदे तीन खुदाए पे तीन खुदाए, कहिंदे महाराज एक खुदा तुसीं तीन कहते हो, महाराज कहिंदे हुण तीन ही है खुदा, एक तां खुदा मुसलमानां विच है उहनूं तां तुसीं सत्कार दिओ, एक खुदा हिंदुआं विच है उह माड़ा है, एक सिखां विच है उह वी माड़ा, कहिंदे जिहड़ा जिहड़ा खुदा थोड़े च मुसलमाना च उह चंगा। इउं करके भाई वीर सिंह ने फिर सारी कविता बनाई है, भाई वीर सिंह ने बड़िया सोहनिया कवितावां लिखिया, साडी छुपे रहण दी चाह साल ना होया, कोला किथे जाके चिट्टा होया लाल होया, कहने अग दी भट्ठी च पाता कोला लाल सुरख हो गया, कहने इउं ही काले मन नूं धोंदे रहो जिथे मर्जी कर्म कांड करी जाओ, ए बंदे दा काला मन किते शुद्ध नहीं हुंदा, जद कहने संगत च लिया के बिठाया यही मन लाल रंग दा हो गया, कहने लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना होवे नै लागै दागा, जा संगत विच बिठा के इनू नाम दा ताओ दिता ता इनू हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठा रंग गुर टुठा हर रंग चाढ़िया फिर बौड़ ना।

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जेडे मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत तो यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसवीं दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसवीं ग्रंथ दी बाणी जिन्हें भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने यह चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जाणी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आइयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
1: जप तप नेचा नारा कर है देखत साज।
0: ना कोई जप रहेगा ना कोई तप रहेगा ना कोई निश्चा रहेगा। लोग एहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जिहड़े भरोसे ने वह टुट जाणगे, ते साजबाज जिहड़ा आ दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा परिवर्तित हो जाणगे।
1: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
0: सो जिस प्रकार दी जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी, जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
0: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो। इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय दे नाल बैठा रहेगा बहुत कुछ हुंदा है, जिहड़ा निश्चय नाल बैठा रहिंदा है जिन्हां दा निश्चा गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते है, अंत नूं जित उसे दी हुंदी है।
1: वाहे गुरु ए मंत्र जप सगल करेंगे काम।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने बाकी कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं है, मूल मंत्र है, जपजी साहब है, फिर श्वास श्वास आखो।

0: सतगुरु किंदे कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दिया रूहां एकाग्रता बख्शियो इन्हें आ जो सुवास इन्हों बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु गाली करो
1: वाहिगुरु
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
2: टिंड
0: माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा ध्यान दिओ उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर टर एक खूह बना आ जे सुवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सुवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे तौण एकाग्रता बख्शियो इस माल नूं जिहड़ा खूह आए नूं खिचे तौण कहिंदे इस भीतर मन जोगो इस भीतर बलदा की जगह से इन खिंचन किनू जो कौन किनू जो मन बेच जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह माला टिंडा खिंचन लिये मन बलद बनाओ तो मन तो साडा सिमरन करद भी दौड़ता रहा है साहब कहते ने तू मन जोड़ के इन्हों टिंडा खिंच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुम पता पिंड वाले खेती बाड़ी करने वाले पता क्यारे पा दी साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आवासा की पिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज उसे खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखा नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां अंदरों आनर के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा सतनाम श्री पढ़ते नहीं।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पेगा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पेंदा है। फिर आखिर महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जंदी गल कर लगता वा। कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा। साहब कहते ने मन नू जो इस श्वासा की माला अपना मगर यह जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया टिंडा की माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं। ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नू विच जोना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

सदगुरु ग्रंथ साहब पिताजी तेरे कवन कवन गुण साहिब तुम्हारी महिमा पिताजी तुम्हारी महिमा जस रे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज स्यो अत नेह लगायो काल फास जब गल करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगारियो पाप करत सुखज्यो नहीं ने गर्भ नवारियो जे बिद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे बिद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे बिद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक

ग्रंथ पढ़े चित्त लाए, ग्रंथ पढ़े एकाग्र चित्त होके गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़े, उस जीव नूं महसूस होगा मैं अपने गुरु नाल गल्लां करने आ, अपने गुरु नाल एडियां उच्चियां सुच्चियां गल्लां कोई कर सकदा है भाई रे? राम कहो ये गल्लां गुरु ही कह सकदा है, वणज करो वखर लियो ये गल्लां गुरु कर सकदा, सत्य व्यापार करो व्यापारी, एडियां उच्चियां सुच्चियां गल्लां कोई साहब कहिंदा है, कोई दुनिया का गुरु कहिंदा है? ये गल्लां केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी कर सकते ने कि हर वेले तुहानू कहण उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर अराधे विखड़े दाओ लगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते, ये वचन गुरु ही कर सकता है। ते जदों आखिया मैं गल्लां करनियां चाहुंदा सां ते भाई जैते ने आखिया जी ये मैनूं मुआफी दिओ, सतगुरु ते आप जी दे दरबार विच सीस पहुंच गया ते फकीर जी ये तुहाडी भुख पूरी हो सकदी आ, ते फकीर ने हथ विच जोड़ के आखिया ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਮਨ ਪੈਰਾ ਮਨ

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेड़े मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वह परमेश्वर जी की पूजा करनी है वह राजान राजा, बोलो राजान राजयां दा भी राजा है, किसे राजे की पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जड़े हुए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे की पूजा नहीं करनी, राजयां दे राजे की पूजा करनी। राजान राज गरीब नवाज पातशाह, लोकी दिन चढ़दा है गड़बियां लेके पानी दियां, जग लेके पानी दियां, सूरज नूं मत्था टेकदे ने, सूरज की पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं, सूरज की पूजा नहीं करनी, जेदी सूरज पूजा करनी है वह पानान पान है, वह सूरजां दा भी सूरज है, ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने, चंद्रमा की पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं, चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं, चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा, नमो चंद्र चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए, कहण लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहण लगे किनू पूजिए, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव्या, देवत्या का भी वह देवता है, ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीयां पूजां विचों ला के मड़ियां दीयां कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिया, मरियां दीयां कबरां ते मत्था ना टेक, आ मैं तेनू दसा जागत जोत जपे निस बासर, बुझियां जोतां दे उत्ते ना मत्था टेक, जागदी जोत नू मत्था टेक, शब्द सदा जपदी जोत है, जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नू इक वार फिर आखो

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: एवं गुरुपद साध जप पाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी सच
0: जुड़ के आखो जी आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी

तो अगले पिंड दे विच एक गुरुद्वारा बनया है जिथे गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह ने यह भी भेटा लई कि जिथे कुछ नहीं घर दे विच कुछ तां गुरु घर ले लियाओ भावे दमड़ी लियाओ भावनी भगत पाए कौडी अगर पास राखे भावनी दे नाल भावे कौडी रखो गुरु अगे लिया के गुरु दरबार दे विच तुहाडी कमाई सफली हो जूगी। ते गुरमुख प्यारी उस बच्ची नूं मेरे गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह कहण लगे धीए गरीबी ने घर दे विच डेरे लाए ने एक वचन मन ला पैरां तों लैके सिर तक जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु फिर सारे कार्ज पूरे होणगे हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया सारे कार्ज पूरे हो जाणगे। इस करके मेरे भरावो धागा लैण दी कोई जरूरत नहीं जल कराउण दी कोई जरूरत नहीं पड़तां नूं आ बहुत सारे कल भी फिर अखबार परसों वेखी ते मास्टर अमर ने लिखिया जी न्यूयॉर्क दा रहण वाला एक हरजीत सिंह जदों सिंह शब्द आउंदा है ते गुरमुख प्यारे सूलां वजदियां ओ गुरु नानक दे सिखा तेनू गुरु तेग बहादुर घरों कुछ ना लब्भा तेनू गुरु नानक दे घरों कुछ ना लब्भा तेरी सोचनी घट होगी तेरिया अखां नहीं खुलियां होणगियां मगर सिंह नाम लैके जे कोई पंडित दे कोल जावे सिंह होके गुरु नानक दे घर दा किसे कबर ते मत्था टेके ते मेरे गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह दे वचन गुरु नानक दे बाणी च पढ़ के वेखो जे घर हुंदे मंगण जाइए जे घर फिर एक बार आखो जे घर किसे दे करोड़ां रुपया पिया होवे ते ओ सड़क दे उत्ते बैठ के कौडी कौडी मंगदा होवे ते जेड़े कौडी देण वाले ने ओ आखणगे इहदे जिड्डा पागल कोई नहीं इहदे घर तां 72 रुपये पए ने इह क्यों मंग रहा है। गुरु दे सिखो तुसी गुरु नानक दे घर दे रहण वाले हो तुहानू मेरे सतगुरु ने मंत्रां दा मंत्र दिता है लोकां दे कोल संसार विच केवल मंत्र आ केवल मंत्र आ आंदे ना ओ भी झूठे मंत्र मगर मान लो किसी को मंत्र जंतर तंत्र है मगर गुरु तेग बहादुर महाराज के लाडले पुत गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तुहाडी झोली दे विच अके पाया है आ मैं सिखा तेनू मंत्रां दा मंत्र दवां आ मैं तेनू जंतरां दा जंतर दवां मैं तेनू तंत्रां दा तंत्र देना तेनू किसी तांत्रिक कोल ना जाना पाए जंत्रक कोल ना जाना पाए मंत्रक कोल ना जाना पाए मैं तेरी झोली दे विच इको शब्द पा दा नमो मंत्र मंत्रंग बोलो नमो मंत्र गज के आखो जरा नमो अर्थ पता की बनिया नमस्कार आ मेरी मंत्रां दे भी मंत्र नूं मंत्रां दे भी आ कोई जंत्रक तांत्रक आ जाए किते पिंड दे विच कोई तुहाडे राह दे विच रस्ते विच तुहानूं कदी जीवन च मिल पै ते ओहनूं आखो सजना चला के विखा तंत्र मेरे ते चला कोई तंत्र जे तेरा चलदा ही ते मेरे ते चला कोई जंत्र जे तेरा चलदा ही ते दुनिया ते सगन अपसगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे मंत्र उन्हां ते चलदे ने तंत्र उन्हां ते चलदे ने जिन्हां नूं चेते नहीं आउंदा मंत्रां दा मंत्र। मेरे साहिब कहिंदे सिखा मैं तेरी झोली च मंत्रां दा मंत्र पाया है जंत्रां दा जंत्र पाया है तंत्रां दा तंत्र पाया है मगर तिन्हां चो शब्द इको ही दिता तेनू मंत्रां दा मंत्र जंत्रां दा जंत्र ते तंत्रां दा तंत्र इको ही शब्द ही वाहेगुरु। बस एक बार प्यार नाल नाभि चो खिच के आखो केड़ा है जी फिर एक बार पूरे रंग विच आण के आखो केड़ा है वाहे गुरु। बस जिहदे कोल वाहे गुरु कोल मंत्र आ प्यारियो धरती दे उत्ते उहदे घर विच कोई मंत्र नहीं चल सकदा कोई जंत्र नहीं मगर वह हरजीत सिंह जिहदा नाम लिखदा पता नहीं अपने कोलों झूठ भी लिख दिंदे ने इह बाबा जी इह किहड़े किसे गुरु पीर वाले ने इहनां नूं किहड़ा किते गुरु ने आखिया कि कूड़ बोल मुरदार खाए इन्हां नूं किहड़ा पुछना है कि गुरु नानक पातशाह ने कि थाओ ना पाए ने कूड़े यार मूह काले दोजक चलिया इथे ते इन्हां कड़ी गुरु नानक दी बाणी पढ़ी आ कि नानक सबो कूड़ है कूड़ो होए गया शर्म धर्म का देड़ा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। ते मैं कह रहा सा जे घर हुंदे मंगण जाइए बोलो जे घर फिर उलामा मिले ताही फिर उलामा मिलदा वा। इस करके सानू कुछ नहीं करना पैना सानू ते केवल अपने दसे गुरु दा आ बचन चेते रखना पैना।

मुकत गुर कीना। आखिया जी फिर पंजे जदों एक बार ते बंधन कटते आपां इत्थे गुरप्यारे कोई भैन बच्ची कल कह रही सी कि जिन्ना चिर गुरु की संगत विच बैठी दा उन्ना चिर ते इतना लगता वी गुरु की कृपा हो गई, हुण नहीं कोई खतरा, गुरु नानक पातशाह की पनाह विच आ गया, मेरा सतगुरु बचालूगा। मगर दो मिनट बाद जदों इत्थों बाहर निकलदे आ ते ओही क्रोध, ओही अहंकार, ओही ईरखा, ओही द्वैत, ओही सोले गाउण लग पैंदे आ। गुरमुख प्यारियो, मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने, बड़े प्यार दे वचन ने, कहिंदे ने दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। ए दुख सुख दे विच काम करो, लोह मोह हंकार दे बंधना दे विच जीव आत्मा मरदी रहिंदी आ, ते गुरु फिर अपने चरण कमल रूपी आश्रम विच जगह दे दिंदा है। जदों कोई चरणा विच ओहदी सुरत टिक जांदी आ, फिर प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए, फिर जदों ओहदे प्रताप दे विच जीव आत्मा जुड़ जांदी आ, फिर ए जम दूत ओहदा खेड़ा छड़ जांदे ने। आओ मेरे सतगुरु दे चरणा विच ओह शब्द आखिए गुर।

धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब।

मैं छुट्टी मनाऊ। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह बाणी दे विच कहिंदे आ दित करे भगत आरंभ। ऐतवार तां भगती आरंभ करनी चाहीदी क्योंकि छुट्टी दा दिन है, सारा दिन वेले गुरु दे कोल जाओ। जिहड़ी सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने पूरने पाए ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसण पाई है। दरगाह दे विच जगह ही तां मिलदी आ जे जीव सेवा ते सिमरन दे नाल जुड़ जावे। ए बाणी दे फैसले मेरे नहीं, जे जीव सेवा करे। ऐतवार वाले दिन एदे मन विच चाह होवे अगे ते मैनू कम कार विचों समा नहीं मिलदा ते मैं जाके कम कार दे विचों कोई समा कढ के जांदा जांदा जाना वा, दर्शन करके काम ते चलिया जाना। अज छुट्टी है, अज मैं अपनी जिंदगी दे विचों कुछ समा गुरु नानक पातशाह दे प्यारियां दे जोड़े झाड़ने ने। अज मैं कुछ समा अपनी दुनिया दे विचों समा कढ के जदों गुरु नानक दी संगत लंगर छकूगी मैं जूठे बर्तन साफ करने ने। अज मैं रोटियां पकाउणियां, अज मैं जल छकाउणा संगतां नूं। मन विच भावना ऐतवार वाले दिन ए परपक बन जाए कि ऐतवार बहुता समा मैं अपने सतगुरु दे दीवार उत्ते गुजारना है, सतसंगत विच गुजारना है। तुहाडे उत्ते सतगुरु गरीब नवाज तुठे ने। बाणी दे विच इक तां सतगुरु जी ने इतना लिखिया, बहां पकड़ जिस मार्ग पावो। बोलो, बहां पकड़ जिस मार्ग पावो, चरण चलो मार्ग गोबिंद। एड़ा गोबिंदा मार्ग आ, गुरुद्वारे आउणा जीव आत्मा ने इथों जीवन दी सोझी प्राप्त करनी। सतगुरु कहिंदे जिन्हों तू बांह फड़ के आप इस रस्ते दे उत्ते पाउणा है, ओ जीव आत्मा तेरे दरबार विच आउंदी, तेरी पनाह दे विच आउंदी, तेरी शरण विच आउंदी। तुसी सोचो हुण जिदन संगरांद वाले दिन दासरे ने आप जी दे आण के जोड़े झाड़े सी, उदन भी बेनती कीती सी कि मन विच सोचो कि सतगुरु कहिंदे ने जिहदी तू बांह फड़ के गुरुद्वारे दे राह ते पावें ओ आउंदा है। ते जे तुसी हुण गुरुद्वारे आयो गुरमुख प्यारे, ते इथों ए सिद्ध हुंदा है कि सतगुरु गुरु नानक ने अज बच्चों तो लैके बजुर्गों तक जिन्हें गुरु नानक की संगत आए हैं साड़ी सारियां नूं बांह फड़ी, बांह फड़ के रस्ते उत्ते पा के ए फुरना बनाया, चल गुरुद्वारे चलीए। सतगुरु फरमाया कारी ए करे हो, गुरुद्वारे होए के साहब संभालियो। गुरुद्वारे जाके उत्थे साहब नूं याद करियो, कथा कहानियां करियो परम पिता परमेश्वर दियां। ए सतगुरु ने भाग आपां नूं लाए ने, उदम बख्शे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने कि आपां जिन्ने गुरमुख प्यारे अज ऐतवार वाले हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दी शरण विच पनाह विच आए हां, दो चीजां लैण गुरु नानक दे घरों आपां मकसद लैण ते आए हां, सेवा ते सिमरन। सेवा करनी आ, सतसंगत दे जोड़े झाड़ने ने, झाड़ू मारना है, लंगर छकाउणा है, लंगर दे बर्तन साफ करने ने, जल वरताउणा है, प्रसादे छकाउणे ने, इह सेवा है। फिर सिमरन करना है सतगुरु गरीब नवाज दा, संगत विच बह के सतगुरु दा हुक्म आ, भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, की करिया करा जी मिल साध संगत भज केवल ना। गुरु कृपा करे ए इन्नी वगदी अज दी तेजी दी अंधेरी विचों, ज्ञान दे युग विचों जेड़े बचन साडे सतगुरु ने साडे कन्ना विच पाए ने, ओ सानू भुलण ना। सेवा ते सिमरन, बोलो केड़े केड़े, सेवा ते सिमरन, इना दोवां कंधां दे उत्ते सिखी जीवन खलोता है। सेवा करनी ते सिमरन करना। कई ऐसियां मेरे वर्गियां रूहां ने जेड़ियां आप ना देहे चुरू भर पाणी, आप कदी जोड़े नहीं झाड़े, आप कदी जी नहीं कीता गुरु नानक दे सिखां दे जोड़े झाड़न नूं, आप कदी जी नहीं कीता किसे गुरसिख दी छोटी बर्तन साफ करन नूं, आप कदी नहीं कीता अमृत वेले उठ के इशनान करके उस पिता दी याद विच जुड़ के वाहिगुरु दी याद विच सिमरन विच जुड़ना, आप जुड़े नहीं। मगर ओ तेह निंदे जिह गंगा आनी, छोड़ कुचर्चा आण ना जाने, ब्रह्मा हूं को कहो ना माने, केवल कुचर्चा दे शब्द कई उन्हां ने रटन कीते ने उन्हां रूहां ने, जिन्हां नूं कुचर्चा करन तो बिना कुछ नहीं आउंदा। मगर आपां गुरु दे सिखां ने किन्नी तेज हनेरी चल जाए, जो वचन गुरु नानक पातशाह ने बाणी विच कहे ने उन्हां दे उत्ते आपां पहरा देना है। सेवा ते सिमरन नूं दृढ़ करके अपने मन विच वसाउणा है।

उन्हें किताब लिखी कद घर घर लिया के पढ़े। उस किताब का नाम है गंजे शहीदां। की है नाम? कदी पंजाब तो मंगवायो, इथे गुरुद्वारे लिया के वंडियो, पढ़े। कितना साहबजादे की शहीदी उन्हें अंकित की। कहिंदा मां गुजरी ने अपनी गोद दे विच सुते हुए पुत्तां नूं, लाडलियां नूं, पोतरियां नूं आख्या, उठो मेरे लाल के लालो, उठो मेरे लाल के लालो, तुझे कंगा तो करा दूं, कंगा करके सीस पे छोटी सी पगड़ी सजा दूं, ऊपर छोटी सी कलगी लगा दूं, मौत से विवाह कराने से पहले मेरे बच्चे तुझे दुल्हा तो बना दूं, मौत नाल विवाह करन चले जे, किते रोंदे ना जायो, ए गाउंदे जायो।

0: ध्यान दो मेरे घर भी बड़े फुल ने ते चार सवेरे घूम के चल जूगा उन्हें उन्हें फुलां वेखना ही नहीं क्योंकि उन्हें पुछया मुड़ने लगे नु मुड़ चलिया वा उथे कोई अलोकार गुलाब दे फुल नहीं आवे किड़े किड़े सुंदर गुलाब दे फुल ने उन्हें कहा सजना ये फुल बनौटी ने इन्हां विच कुछ नहीं जिहड़ियां साडे घरां विच भी बाबियां दियां फोटो लगियां ने ना करमा वाला गुरु दा सिख इन्हां बाबियां वल नहीं वेंदा क्योंकि उन्हां दे विच सुगंधी नहीं सुगंधी आ ते केवल जागदे जोगदे जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बाणी विच गुरु नानक साहिब ने वचन कीता है रसिया होवे मुश्क का बोलो रसिया होवे तब फूल पछाणे जे कोई जीव आत्मा प्रेमी होवे वासना दी ते ओ आखूगी ये गुट्टे दा फुल आ ये चमेली दा फुल आ ये फलाने दा फुल आ ते जे वासना दा ना प्रेमी होया केवल फुल दा होया ते आखू ये फुल ने इस करके गुरु दे प्यारे वासना नाल प्रेम करना है ओ वासना गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मिलदी आ केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों मिलदी आ दुनिया ते कोई पीर कोई पकंबर कोई देवता जेदी पूजा करनू आप जी नू नहीं किया इको ही गल आप जी नू गुड़ती दे विच पाई गुरमुख नादंग गुरमुख वेदं गुरमुख रिया गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई आख दियो एक बार गुरा एक दे बजाई जिया का एक दाता सो मैं उस गुरु दे लड़ लगो जेड़ा सारे संसार दा प्यो आ सारे संसार दा पिता है मेरी हाथ जोड़ के आप जी सारे नूं बेनती दे अगले एतवार इस वेले नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है अमृत वेले 7 बजे दा टाइम रख देना है क्योंकि दीवान लगन तो पहलो पहलो अमृत दा बाटा तैयार हो जाए मेरी हाथ जोड़ के बच्चियां वीरां गुरसिखां सारिआं दे चरणां विच बेनती है गुरसिख प्यारिओ ये फर्ज समझो जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरै नाम आप अमृत छकिआ जे ते दसो संसार दे लोकां नूं ए अमृत बड़ा मिठा है दसो संसार दे लोकां नूं कि अमृतधारी सिख दा जीवन होवे जन्म सुहेला असीं सुखी हां लोकां नूं दसो कि असीं अमृत जिदन दा छकिआ वा साडे घर विचों 100 वैवतां निकल गईआं साडे घरों विचों बीमारियां निकल गईआं साडे घरां विचों परेशानियां निकल गईआं संसार दे लोकां नूं प्रेरो होर नेमियां प्रेमियां नूं प्रेरो मेरे सतगुरु कृपा करन कलगियां वाले पातशाह कि उदन आपां वड्डी गिणती विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे धीआं पुत बणीए ते मेरे सतगुरु दीआं असीसां लईए प्रचार करन दा कथा करन दा संत बाबा हरदेव सिंह लूलो कलां वाले एक दिन बचन किसी दी कैसट विच मैं सुन रहा सां वो कहिंदा कणक ते बड़ी बीज दी उग भी बड़ी पैंदी वड भी बड़ी लईदी मगर पता ते उदन लगना जिदन बोल किन्ना क लगदा है कथा तां सुन लई कीर्तन दरबार ते करा लै पता उदन लगना गुरमुखो प्यारियो जिदन ए पता लगे कि 15 दिनां दी कथा ते कीर्तन दे विचों किन्ने गुरु दे सिख सजे ने इस करके आप आयो ते होरना नूं प्रेरियो संदेशा दियो कि अमर शकीय गुरु वाले बणीए भुल्लां ना चतारनियां वड्डी गिणती विच आउणा वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत ना पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जिहड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेडे नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे, उन्हां ते शतर अनेक चलावत कहावत तन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर, कर मने हाथ, उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा, राखत है अपनो कर दे कर, पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहा कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वडदाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे, अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे, पुट्ठा मूंह थले नूं लत्तां तां नूं, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रहा सी विचारा, मगर उथे ए जप रहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री, जिथे अग्न पखे पड़हारे उर्द मुख महा गुबारे, ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहिगुरु नूं याद करदा सी, उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहिगुरु दी याद विच जुड़िया सी, ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया, इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया, बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम, उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छडा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गज के आख्या करो, उस फोटो नू वेख के उस तस्वीर नू वेख के उथो छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथो छडा के बाहर लिया, विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गर्भे निकल आया, जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार फिर बोलो खसम वसार बस विचों बाहर आया, ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने, ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया, मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ? ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ, ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ

0: बोलो दुर्लभ दे, एक बार बोल दो, बड़ा प्यारा भजन है राम कली महल्ला पंजवा, दुर्लभ दे, फिर बोलो दुर्लभ दे, सवार जाए ना दरगे हार, इन सवार ला सजना किते दरगाह दे विच हार ना जावे, किते इस तरह की बंदगी कर ला, कह नानक ए शरीर परवान हुआ, केड़ा जी कह नानक ए शरीर गजके बोल, को नानक ए शरीर केड़ा जी, जिन सतगुर स्यो चित लाया, जिन सतगुर स्यो चित लाया, वो शरीर प्रवान हो गया आया, जिन्हें अपने सतगुरु नाल चित जोड़िया, जिन्हें अपने मालक नाल चित जोड़िया। मेरी आप जी सरबत माई भाई नू हाथ जोड़ के बेनती है, जिथे लड़ीवार कथा सुन दे, उथे अमृत दा बाटा 29 तरीक नू सवेरे 7 बजे इथे आरंभ होना है। अमृत छक के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह शहनशाह दो जहान वाली दे धीआं पुत्तर बनो, उस दिन वेखियो माण किड्डा वड्डा मिलना है। अज तक तुसी तेजा सिंह दे पोते हो, तेजा सिंह भी जूनी विच आ, तुसी भी जूनी विच हो, तेजा सिंह भी भिखारी आ, तुसी भी भिखारी हो। जिदन तुसी आनंदपुर साहब वाले दे अमृत दे नाल जुड़ जाणा है, उदन तुहाडे पिता जी हो जाणे ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, ते ओ आ दो जहान दा मालिक, ते तुसी पुत बन जाणा है दो जहान दे मालिक दे। एडा वड्डा तब्दीली जीवन दे विच के गुरु गरंटी दवे पियो पौल खंडे तार होए, इथे कोई धागे वाला कह दे लै धागा लै ला, तेरे घर विच दुख नहीं आउणगे, ते आपां लका लका के गुरु तो बेमुख होके धागा पाई जाने आ। गुरु डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा है कि कृपान पाला तेरा होवे जन्म, ते आपां गुरु दे कहण दे उत्ते नहीं चलदे, गुरु दे बचना दे उत्ते चलो, अमृत छको गुरु वाले बनो, सतगुर दीआं खुशियां प्राप्त करो, भुल्लां ना चितारनियां। आउंदे एतवार वाला दिन भागां वाला दिन फिर इस दरबार विच आऊगा, जदों पंज प्यारे साहिबान सज के सतगुरु दी हजूरी च आउणगे, अनंत जन्मां तों विछड़ियां होईयां रूहां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लाउणगे, गुरु वाले बनाउणगे। नुगरे काहे नाम गुरा, भुल्लां ना चितारनियां जी, असीस देनी मेरे जीवन दा एक एक सवास वफादार कूकर वांग गुरु नानक दे दर ते प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है ही सच नानक होसी भी सच करो।

0: कुदरत कवन हमारी ज्यों बलावे त्यों बोला स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। तनता दे जोग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन वचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन धन है
1: सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन धन है
0: सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन धन है
1: सतगुर दर्शन धन सतगुर दर्शन धन है।
0: धन धन गुरसिख परसन आया धन धन गुरसिख परसन आया
1: धन धन गुरसिख परसन आया धन गुरसिख परसन आया
0: धन धन गुरसिख परसन आया धन धन गुरसिख परसन आया
1: धन धन गुरसिख परसन आया धन धन गुरसिख

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सरबत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम है, समस्तल कलाम है। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दीन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच ओथो तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे भजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखीए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैंने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलना किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलना किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलना जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत
1: नाम वाहे
0: भैनों गज के
1: नाम वाहे गुरु
0: मेरिया धियां गज के जरा बोलो

0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ, बोलो कहो नानक ताके, मैं ओदे तो बलहार जाना, स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ, कलयुग में पाया जेडे कलयुग विच जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा, इन्हें टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी, मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग विच वी कहिंदा सतनाम श्री वाहे, ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर कार्ज मेरे सतगुरु सवार दिंदे गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहे। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नू खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नू टका के रखियो, मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे, आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी,
0: वाह।
1: नाती धोती संभही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इथे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे बचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभही, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई, जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभही सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है, वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर की बंदगी की गल आई उदों बेहोश होके सौं गया। जिथे नितनेम की गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम की गल आई, सिमरन की गल आई, उस गलों बेहोश होके ए जीव सौं गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होए, नाता होए, धोता होए, परमेश्वर की बंदगी करता होए। महापुरश बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने समझणा फिर, ते उहने आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौंजीए ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, ओदे विच बीज पा दिता होवे, ओदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर ओदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर ओ फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फेर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना ओ बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां एक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौं जाईए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इतना दे बचन करदे ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंगदी, गई कथूरी गंध,
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी, कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओ फिर उड गई सौण दा सदका, ते हिंग दी जदों हिंग दी बो आउंदी आ, जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने, हिंग दी बो आ रही, कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओ ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबो ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां ही रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़दिया बहिंदिया सौंदिया इहदे मुंहों जिहड़ा वाहिगुरु निकलना सी, जिहड़ी परमेश्वर दा मिठा सुभा सी, ओह उहदे मुंहों माथे त्रिकुट्टी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

0: साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहेबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालिया चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठियां लिख उन्हां दे विच दोखी ते लिखे ने उन्हां दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानूं आ बेनती करदी हां मैं तुहानूं आ बेनती करदी हां जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईया फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसन सोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहती ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहती नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नु कहंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नु उत्ते बाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ लू पांच साल दी बच्ची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नु लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इना ली पुत वार के गया है इना ली मां वारी सी इना ली प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ है जे तेरे तो बेमुख हुंदा जांदा ही मेरा कहने का मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखा दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछी इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रही विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक इहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गलो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे हाय
0: हाय हाय
1: सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म जन्म

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी हो दे तो बिना उदास हो गई है, शेर देने नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहां तरला तुसी वी, एक भोरी

करो कृपा। विण सेर सेव करी जय, विण सेर सेव करी जय, विण सेर ए पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चाह मन विच पैदा होया, वह सौदा कर दियां ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूड़ा बना के तेनू उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं आ जूटा सैटी जिथे गया सा, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, आ फिर एक बार आखो का दी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने इस दुनिया ते, इस वेले 99 गुरु अधूरे ने, 99 एको ही पूरा है बाणी गुरु, एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं। उथे कमाल दी गल सुनाई, सहते मोना सी, कहिंदा जी कथा सुनदा वा, आनंद आया जीवन विच, मैं तुहानू घुमण खाणना है किसे दिन। जूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने, बर्फ पैंदी, मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिया, घुमाण लै गया, ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो, मैं कोई रोचक गल बना के आप जी का ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना। पहाड़ी दे उत्ते लै गया, जाके कहण लगा कि कुछ दिनां तों जदों दा कथा सुन लिया, मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां। आप जी नूं खुशी दी गल दसां, 27 तरीक नूं उत्थे अमृत दा बाटा तैयार करना है, सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया। जिन्नियां 60 फैमिलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच, 60 दियां 60 फैमिलियां ही अमृत छकण लई तैयार, सारियां ने नाल खाता, ऐसी गुरु की कृपा हुई। इनू जदों दास ने बेनती की कि छसरना जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकण लई तैयार हो जा, कहिंदा मैं नाम लिया है, ध्यान दियो मैं नाम लिया है। मैं कहा नाम कितों लै लिया, पंजां तो बिना ते नाम कोई दे नहीं सकदा। बोलो आखो सतनाम श्री, क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखिया सतगुर दाता हर नाम का, सतगुर दाता, फिर बोलो सतगुर दाता, गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा, सतगुर दाता अमृत दा बाटा भी जे कोई कल्ला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे, पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे, कला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी, पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे, जेड़े पंजां दा फैसला है। ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है, मैं कित्थों लै लिया नाम, राधा स्वामी तो, कहिंदा नहीं, मैं निरंकारियां कोलों, कहिंदा नहीं साडे दुश्मन थोड़े नहीं होण, आप जी नूं तां बेनतियां करदा सचेत होण दी जरूरत, दुश्मन थोड़े नहीं। आख्या फिर कित्थों लिया, सच्चे सौदे वालियां दा लै लिया ई, नूर महल वालियां दा कोई शब्द शू चानना वेख लिया, कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया। मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया, एक बड़ी सत्कारयोग संस्था दा नां लैके, कहिंदा जी पुच्चो दी मंडी वालियां कोलों नाम लिया है, पुच्चो मंडी, बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने, बड़ी करनी वाले, बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई, रब दे चरणा नाल लपटी हुई रूह रही। मैं कहा पुच्चो मंडी वालियां दा नाम ते मैं सत्कार नाल सुनिया, देखिया तो नहीं कदी, वो नाम देंदे ने, कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च। मैं कहा जी उत्थे की है, कहिंदा आओ मैं तुहानू घर जाके विखाउणा, ध्यान देना आखो सतनाम श्री। जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना, इतना दी पग, इतना दा कमीज पजामा, करण मरड़ी दाढ़ी, उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह, कहिंदा मैनू उहने नाम दिता है। मैं की नाम दिता है दस देंगा, कहिंदा दसदा तां नहीं, उह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसे नूं, मगर तुहाडे नाल वी प्रेम पै गया, मैं दस दूं उहने नाम की दिता, ध्यान दिओ। मैं की नाम दिता है, तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण, इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे। राधा स्वामी का पता लग गया कि साढ़े दुश्मन ने सानू तोड़ दे, निरंकारियां का तो पता लग गया, आ जिहड़ियां सिखी भेस विच कालियां भेडां इन्हां नूं की करोगे। आखण लगे जी उहने नाम दिता, मैं की नाम दिता है, कहिंदा एक ओंकार सुनियो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद ओम, इन्ना लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम। फिर अगे सुनो, बह जा पुत बह जा, इना दे के
ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸਭ ਅੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਸ਼ੇਵਾਏ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾੜਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰਿਅੰਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ई ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेशर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवां नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: सैवं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद सच
1: है भी सच नानक होसी भी सच
0: जुड़ के आखो जी आद सच जुगाद
1: सच है भी सच नानक होसी भी

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो।

बड़े प्यारे वचन ने, समझने की कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत वांझिया कर देना है। एहो हर रस। बोलो एहो अमृत की आ हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोए दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे ते जिन्हां नूं ए हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा। ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहिब कहिंदे ने यह पक्की गल आ जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गवन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ गुरु दी पनाह विच आउंदी आ गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गवन मिटे। बोलो आवा गवन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाव संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दिओ सेवा दिओ। आवा गवन मिटे। बोलो आवा कदों प्रभ सेव जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया जदों आप त्याग शरण गुरदेव आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गवन मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं। उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिदन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया। मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वा कि उन्हां दा आवा गवन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां सिमरन बड़ा करदे हां जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं जिदन मिट गई उदन बन गई जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच उन्ना चिर आवा गवन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने ध्यान देना जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जित्या। बाबे ने दो देश नहीं जित्ते। इह ते साडी बदकिस्मती आ कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए। जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए। जे मक्के मदीने गए उत्थे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना तुसीं कहिंदे हो नवा दिता। टेलीविजन दे उत्ते रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫਿਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ए तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थां नहीं जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनू मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दी लत्तां खिंचदे ही एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु है उल्टे चले गई है नफरत कर दई एक दूसरे